0: पैदा होता है ना बच्चा, तो मैं गोद में लिया था, मैंने कान में तबला ही बुलाया था।
1: I'm playing tabla. I still hadn't noticed that I was doing that. I was just having fun.
0: ये भी पखावज का है और ये बड़ी ये भी चक्करदार है मतलब।
1: And then I would.